और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है, और इन महरमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ्फत कायम रखना हो, न शहवत रानी। तो जिन औरतों से तुम फायदा हासिल करो उनका महर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो, और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से महर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है।

तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने तई पाकीजा कहते हैं? नहीं, बल्कि खुदा ही जिसको चाहता है पाकीजा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा।

क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं और चाहते ये हैं कि अपना मुकदमा एक सरकश के पास ले जाकर फैसल कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उससे एतकाद न रखें, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहकाकर रस्ते से दूर डाल दे।

उन लोगों के दिलों में जो कुछ है खुदा उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल न करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाएं।

और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलमे से उसे दुआ दो या उन्हीं लफ्जों से दुआ दो, बेशक खुदा हर चीज का हिसाब लेने वाला है।

मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी कौम के साथ लड़ने से रुक गए हों, तुम्हारे पास आ जाएं तो एहतराज जरूर नहीं, और अगर खुदा चाहता तो उनको तुम पर गालिब कर देता तो वो तुमसे जरूर लड़ती। फिर अगर वो तुमसे जंग करने से किनारा कशी करें और लड़ें नहीं और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें तो खुदा ने तुम्हारे लिए उन पर जबरदस्ती करने की कोई सबील मुकर्रर नहीं की।

तुम कुछ और लोग ऐसे भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब फितना अंगेजी को बुलाए जाए तो उसमें औंधे मुंह गिर पड़े। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कशी न करें और न तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह भेजें और न अपने हाथों को रोकें, तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो। उन लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हारे लिए सनद सरीह मुकर्रर कर दी है।

फिर जब तुम नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में खुदा को याद करो। फिर जब खौफ जाता रहे तो इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह अमन की हालत में पढ़ते हो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है।

0: ये लोगों से तो छुपते हैं और खुदा से नहीं छुपते, हालांकि जब वो रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता तो उनके साथ हुआ करता है और खुदा उनके तमाम कामों पर इहाता किए हुए है।
1: हाँ।

अगर तुम खुदा के शुक्रगुजार हो और उस पर ईमान ले आओ तो खुदा तुमको अजाब देकर क्या करेगा, और खुदा तो कद्र शनास और दाना है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: आई थिंक जो चीज़ यूनिक है हमारे प्रोग्राम के बारे में और हमारे कैंपस के बारे में वो ये है कि जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ मिलता है वो आई थिंक इनके कंपटीटर्स में नहीं मिल सकता. फॉर एग्जांपल हमने पिछले एक साल में जितने ज़्यादा इवेंट्स करवाए हैं और जितने अहम डिग्निटरीज हमारे इवेंट्स में आते हैं फॉरन्स, अभी हमने वी हैड अ वेरी लार्ज कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी, तो वी हैड स्कॉलर्स फ्राम सिंगापुर, स्कॉलर्स फ्राम इंडिया, स्कॉलर्स फ्राम पोर्चुगल, स्कॉलर्स फ्राम इंग्लैंड, फ्राम अमेरिका स्कॉलर्स आए थे. They spent 3 days here. They interacted with the students. Students were part of the whole, engagement. बल्कि students ही हमारे events करवाते हैं. हमारी जो faculty उसका emphasis आ रहा है इस बात पे है कि students को आगे लेके आया जाए. तो उसके अलावा हमारे पास अपने पाकिस्तान के अपने important politicians, speaker of the Punjab Assembly और इस तरह के लोग भी उस conference में आए थे. Similarly, last time हमने पिछले साल we had a conference on climate change और उसके अंदर भी इसी तरह global scholars वगैरह आए थे और important senators आए थे और ministers आए थे. और स्टूडेंट्स उनसे खुद मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं. इट्स अ वेरी ओपन फ्रैंक एनवायरनमेंट. तो जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ मिलता है और जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ ऑफ द फैकल्टी इटसेल्फ, हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं हाईली क्वालिफाइड, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरन एजुकेटेड, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो हेल्प कर लेते हैं अगर स्टूडेंट्स भी बाहर पढ़ना जाना चाहें. या मार्केट में चूंकि हमारे पास प्रैक्टिशनर्स भी हैं हमारी फैकल्टी में, तो इफ़ दे डोंट वांट टू स्टडी फर्दर बट दे वांट टू गो इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड इमीडिएटली, उसके लिए भी हमारे फैकल्टी के बड़े अच्छे नेटवर्क्स बने हुए हैं और स्टूडेंट्स आसानी से फिर मार्केट प्लेस में जाके अपनी जॉब वगैरह ले सकते हैं.
1: वेल दैट इज़ वेरी गुड टू हियर सर. अच्छा सर, आपने शुरू में मैंशन किया था कि जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है वो एक छोटी फैकल्टी है, तो सर मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं इस फैकल्टी को लेकर, क्या आप इसको ब्रॉड करना चाहेंगे या क्या फ्यूचर गोल्स आपने सेट किए हैं कि हमने इस डिपार्टमेंट को, जो ये फैकल्टी है, उसको यहाँ तक लेके जाना है?
0: हाँ बिल्कुल, वी आर वेरी एम्बिशियस एंड वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह. हमने क्या किया है कि पिछले बहुत कम वक्त में हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से हम मास्टर्स पे भी आ गए और हमने अभी रिसेंटली पीएचडी भी लॉन्च कर दिया आईआर में, और पॉलिटिकल साइंस का बीएस भी इतना पुराना नहीं है और हमारा प्लान है कि उसमें भी हम मास्टर स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर पीएचडी की तरफ भी जाएंगे. तो हमारा प्रोग्राम और हमारी फैकल्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है. आई थिंक वी विल डू वेरी वेल एंड वी आर डूइंग ऑलरेडी वेरी वेल. तो स्टूडेंट्स हैव ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स व्हेन दे कम टू यूनिवर्सिटी.
1: सर मुझे एक और बात बताइएगा कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा ना टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने से डरता है कि टीचर को कोई बात बुरी ना लग जाए, तो सर मुझे इस हवाले से बताइएगा कि यूसीपी का या जो आपकी जो फैकल्टी है उसका कैंपस कल्चर किस तरह का है? स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रीली टीचर से आके बात कर सकते हैं उनके ऑफिस आवर्स के दरमियान या उनके पास उनके ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, इस तरह का ये पॉसिबल है?
0: जी जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के साथ हमारा तो बहुत फ्रैंक रैपोर्ट होता है. हम स्टूडेंट्स को we have office hours pretty much every day. Students can come meet us in our office hours. आगे हमसे गपशप लगा सकते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर लेते हैं. उसके अलावा वी हैव अवर ओन मेंटरशिप प्रोग्राम, तो एवरी स्टूडेंट हैज ए फैकल्टी मेंटर एडवाइजर जो कि थ्रू आउट द 4 years विल स्टे अटैच्ड विद दैट फैकल्टी मेंबर, और जो भी उसको पर्सनल मसाइल आए या एकेडमिक मसाइल आए दे कैन इजीली गो एंड टॉक टू स्टूडेंट्स. मेरे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं, हम गपशप भी लगाते हैं, मसाइल पर बात भी करते हैं, मैं उनको बुक रिकमेंडेशन भी देता हूँ, एंड कभी कभी वो मेरे पास दे कम एंड सेड दे हैव टी विद मी एंड वी हैव अ लॉन्ग चिट चैट सेशन. तो बिल्कुल फैकल्टी इज ऑलवेज अवेलेबल एंड हैप्पी टू इंटरेक्ट विद.
1: Well, that is great to hear, sir. अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जो मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं जो कि अभी फ्रेशली जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है और वो चूज करना चाह रहे हैं कि कौन सी फैकल्टी के अंदर एडमिशन लिया जाए, सर क्या जो आईआर है उसको क्यों चूज किया जाए? ये वाली फैकल्टी जो है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज उसको क्यों चूज किया जाए?
0: हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, और जाहिर है स्टूडेंट्स हम अक्सर ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होती है जब वो स्कूल से या कॉलेज से निकलते हैं मैट्रिक एफएससी करके कि आगे हम क्या करें. बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता होता है उन्हें जिंदगी में क्या करना है. अक्सर स्टूडेंट्स बेचारे यूनिवर्सिटी में आके भी वो अभी सोच रहे होते हैं कि हमें पता नहीं है व्हाट शुड वी बी स्टडीइंग और शुड वी रियली बी स्टडीइंग व्हाट वी आर स्टडीइंग. तो कैसे पता चले कि क्या पढ़ना चाहिए? आई थिंक इसमें हमें एक तो इंसान की ज़रूरियात को देखना ज़रूरी है, दूसरा मुस्तकबिल को देखना ज़रूरी है. अक्सर हम देखते हैं कि लोग, अब जाहिर है क्योंकि मेरा ताल्लुक ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के साथ है तो मैं आई विल टेल यू गिव यू दैट पर्सपेक्टिव. अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी का है, फ्यूचर कंप्यूटर साइंस का है, आईटी का है, एआई का है, तो सब लोगों को यही पढ़ना चाहिए. और ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सब्जेक्ट्स फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, ये तो उसका ऑपोजिट सब्जेक्ट्स हैं तो ये क्यों पढ़ने चाहिए. एक्चुअली अगर मैं आपके लिसनर्स की तवज्जो इस तरफ करवा सकूं तो उनको ये पता चले कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन आ रहा है, और अब हमारे स्टूडेंट्स भी, बच्चे अब तो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे बच्चे इवन फ़ोन पे वो मेटा का एआई इस्तेमाल

0: रहे होते हैं, लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, और एआई सीम्स टू बी टेकिंग ओवर। और जिस वक्त दुनिया में लोग अहले नज़र हैं जो दुनिया को बड़े गौर से देख रहे हैं, उनका नब्ज, उनकी नब्ज जो है वो माशरे की उस पल्स पे है, तो वो ये बता रहे हैं और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रेवोल्यूशन है, इसने आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल एरियाज़ को नापैद कर देना है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, ग्लोबली भी देख रहे हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, उनके काम आर बीइंग एनक्रोच्ड अपॉन बाय एआई। तो अभी मैं एक मीटिंग में था रिसेंटली, उसमें पता ही चला कि पाकिस्तान में जो आपकी आईटी की जॉब्स हैं, एक्चुअली दे आर इन डिक्लाइन। पिछले साल पाकिस्तान में 80,000 जॉब्स थी कंप्यूटर साइंस की, इस साल सिर्फ 30,000 जॉब्स हैं। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ दे आर डिशिंग आउट सो मेनी आईटी ग्रेजुएट्स। और उसकी वजह क्या है? एक तो यह है कि आईटी चूंकि सब लोग पढ़ना चाहते थे तो सब लोग उसमें चले गए, ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हो गए, ज़ाहिर है मार्केट की एक लिमिटेशन होती है ना, तो उतने अब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मार्केट में नहीं है, एक तो ये वजह। दूसरी वजह यह है कि एक्चुअली एआई इतनी स्मार्ट है कि वो खुद ही कोड लिख लेती है, खुद ही वेबसाइट बना लेती है, खुद सॉफ्टवेयर बना लेती है। तो कंप्यूटर साइंस वालों ने, बेचारों ने खुद ही एक फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर बना लिया अपने लिए, वो अपने आप को ही बेरोजगार किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी है जो उन्हीं को गैर जरूरी कर देगी और कर रही है। और दुनिया में अब ये बात हो रही है कि 2030 तक शायद एआई कम्प्लीटली आपके दुनिया को बदल चुकी होगी, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड को बदल चुकी होगी, आपकी जॉब शायद किसी को जरूरत ही ना हो। इवन टेक्निकल जॉब्स लाइक डॉक्टर की जॉब्स हैं, अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट अ कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन द यूएस, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें वो ये मेडिकल डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं एआई के ऊपर, वो ये बता रहे थे कि हमारे अब एआई के जो एजेंट्स हैं, जो एआई बॉट्स हैं, जो हमारे पास टूल्स हैं, वो रेडियोलॉजी में जो स्कैन्स किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन स्कैन्स या बॉडी के स्कैन्स, जिसको देख के डॉक्टर बताता है कि आपको मसला क्या है, वो कहते हैं कि हमारे जो एआई की एनालिसिस है उन स्कैन्स की, वो उसकी एक्यूरेसी 95% है तकरीबन, और जो एक बहुत बड़ा पुराना मंजा हुआ डॉक्टर होता है उसकी एक्यूरेसी 60% होती है। यानी एआई इज़ बेटर देन अ रियल डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर एट जजिंग योर डिजीज़। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता ही डॉक्टर्स को भी गैर जरूरी कर देगी। तो जहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, डॉक्टर की जॉब भी चली गई, एआई ने सब कुछ करना शुरू कर दिया। अकाउंटेंट भी आपको नहीं चाहिए, एआई आपके सारे अकाउंट्स देख सकता है, कर सकता है, ऑलरेडी कर रहा है, और इंप्रूवमेंट्स कितनी स्पीड से आ रही हैं। अभी दो हफ्ते पहले चैट जीपीटी 5 आ गया है, या आगे ग्रॉक 4 आ गया है, तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन एरियाज में जाना तो खतरनाक है, तो फिर कहाँ पर जाएँ? जब दुनिया के ऊपर एआई की हुकूमत होगी और रोबोट्स आ जाएंगे, और वो आ रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता है टेस्ला की फैक्ट्रियों में रोबोट ज़्यादा हैं, इंसान कम है, तो फिर उस दुनिया में इंसान को ज़रूरत महसूस फिर साइंस की नहीं होगी, आईटी की नहीं होगी, बल्कि ज़रूरत उसको महसूस होगी इंसानियत की। ही विल फील लाइक मुझे ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। हर जगह रोबोट्स हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी है, हर जगह कंप्यूटर एजेंट्स हैं, तो इंसान कहाँ पे है? वहाँ पे उसका दिल करेगा कि मैं कोई पोइट्री पढ़ूँ, कोई हिस्ट्री पढ़ूँ, कोई फलसफा पढ़ूँ, कोई इंसानी ताल्लुक बनाऊँ। एरिस्टोटल ने कहा था ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो उसकी ह्यूमन नीड्स हैं। तो वहाँ पे फिर दिस इज़ वेयर यू स्टडी ह्यूमैनिटीज़, एंड ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज़ का एक जो ग्लोबल स्केल है वो पॉलिटिक्स और आईआर है। तो वहाँ पे फिर इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ वेयर रियली आई थिंक फ्यूचर में इवन फ्रॉम अ करियर परस्पेक्टिव यू विल बी बेटर ऑफ स्टडिंग ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिक्स, आईआर देन स्टडिंग इवन कंप्यूटर साइंस। दिस इज़ माई व्यू।
1: थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट, एंड आई गेस ये सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है, जिस तरह से आपने बताया कि एआई वुड बी टेकिंग ओवर द ऑल द वर्ल्ड।
0: इट इज़ ऑलरेडी टेकिंग ओवर, आप देख सकते हैं।
1: इट इज़ ट्रू सर, इट इज़ ट्रू। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ, कीप लिसनिंग टू एफएम 92.6। आप सुन रहे थे फैकल्टी आवर, और ये एपिसोड इख्तिताम की तरफ पहुँचती है। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: उनके तलफ्फुज लहजा जो है उसकी ठीक प्रैक्टिस करें, फिर वो ट्यून गाएं।
1: Right.
0: फिर वो कहते हैं कि कॉपी कम से कम करें, कॉपी करते रहेंगे अपना स्टाइल ही बनेगा। जैसे मेहदी सन, उन्होंने अपना ही स्टाइल गाया, गुलाम अली ने अपना स्टाइल, रफी ने अपना स्टाइल, रफी ने ये नहीं किया तभी वो रफी, कि किशोर का स्टाइल, किशोर ने अपना स्टाइल, मना डे ने अपना स्टाइल। तो वो ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करें, ये नहीं कि चलो चलने दो किसी के, गा ले कोई बात नहीं, लेकिन अपना मनवाने के लिए अपने स्टाइल पे कॉन्सेंट्रेट करें, वक्त लगाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चूंकि स्पिरिचुअल सा काम भी है, चाहे आम ही हो, सुर पे वर्क किया जाए। सुर जो है वो स्कैन हुआ, वो मतलब हम कह रहे हैं ये आ ऐसे रब, सुर फटे ना इसमें, फिर इसको साफ करते, दर्द पैदा करते, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग करना, रियाज करना।
1: right.
0: सुर को खर्च कहते हैं, पहले सा को, वो कहते खर्च का रियाज, उसको देखते रहना कि वो एक जर्रा भी चढ़ रहा है उतर रहा है, आवाज में लर्जिश है, उसको रियाज करने से खत्म हो जाता। आज के लोग उस तरह रियाज नहीं करते, और रियाज जो है वो जो वोकल है ना, वॉइस कल्चरिंग है, वो किसी की गाइडेंस में करनी, को पास बैठा हो, को टीचर हो, को दोस्त हो। आजकल बड़ी आसानी आपके पास, लैपटॉप ना भी हो ना कुछ स्टूडियो, ये मोबाइल है, मोबाइल में अपनी रिकॉर्डिंग करें सुर के लगाने की, हफ्ते बाद फिर रिकॉर्डिंग करें, फिर देखें उसको सुने, और किसी को सुनाए भी उस्ताद के अलावा भी कैसी लग रही है, फिर वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाती, लेकिन कोई इस पे अमल नहीं करते।
1: राइट सर, एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने रियाज की बात की है कि रियाज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके जो सिंगिंग है, आपकी आवाज़ के लिए, और स्पेशली आपके नोट्स स्कैन करने के लिए। इस पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना, एक छोटा सा सवाल है मेरा, बट उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से वापस आके हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि रियाज का प्रॉपर तरीका और रियाज का सही मायने क्या होना चाहिए। तो दिस इज Saurabh Shams and you're listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: फर्क पड़ता है जब कानून नाफिज करने वाला हर जवान हर इदारा अपनी कौम को मनशियात से बचाता है और हर शहरी 1415 पे मुकम्मल राजदारी और जिम्मेदारी से मनशियात फरोशों की इत्तला देता है। फर्क पड़ता है हमारी हिम्मत से, हमारी कॉल से। 1415 मनशियात अब नहीं।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Duniya.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मुझे नहीं करना कोई काम। मैं जा रहा हूं घर का।
1: मां तंग थी और रोज रोज जी झगड़न का हाणी यू न लदो।
2: परेशान न थी दोस्त, ही वट इन जो हिक्की कश तो हर परेशानी दूर करे छरिंदो।
1: नशो परेशानी जो हल ना है।
2: दोस्त आया तुझो वट लगाए कश।
1: तू मुझो दोस्त न थो थी सगी। दोस्त सुठा मशवरा दींदा इन, हौसलो दींदा इन। नशो न मुझो फैसलो, नशो हरगिज़ न।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد تاشفین صاحب، اینڈ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ایک سبجیکٹ ہے، جو کہ اوور آل جو سبجیکٹس ہیں، جیسے جو فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ہے، اس کی جو سب برانچز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز، اور جو پولیٹیکل سائنسز کی برانچز ہیں، اس کے بارے میں ہم سر سے بات کر رہے تھے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے جو گریجویٹ کر چکے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اب الومنائز بن چکے ہیں، سر وہ کسی ریناؤنڈ پلیس پہ کام کر رہے ہیں یا کسی ریناؤنڈ جگہ پہ کسی عہدے پہ فائز ہیں؟
2: ہاں بالکل، ہمارے ابھی چونکہ ڈپارٹمنٹ اتنا پرانا نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو مینی الومنائی یٹ، ہمارا ابھی صرف دو بیچ گریجویٹ ہوئے ہیں، لیکن ڈسپائٹ دیٹ ہمارے اسٹوڈنٹس بڑی سیکھوں میں پہنچ چکے ہیں۔ فار ایگزامپل میڈیا ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس باہر بھی پڑھنے جا چکے ہیں۔ ابھی صرف پچھلے سال ہی ہمارے دو اسٹوڈنٹس، حالانکہ ہمارے کوہارٹ از ناٹ ویری لارج، اس کے باوجود ٹو اسٹوڈنٹس آر اسٹڈیئنگ آن فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ان فارن کنٹریز۔ ایک اسٹوڈنٹ ہماری ٹرکی میں فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ہیں، اور ایک ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہنگری میں فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ہیں فار ڈوئنگ اے ماسٹرز ڈگری۔ تو یعنی یو سی پی از اے گریٹ پلیس ٹو گو اینی ویئر، اٹس اے اسپرنگ بورڈ، اگر آپ باہر جانا چاہیں، فنڈنگ بھی لینا چاہیں تو یہاں اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے، اور ملک کے اندر بھی کام کرنا چاہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھے ابھی ملا کچھ دن پہلے، اور وہ ہی واز مائی اسٹوڈنٹ فرام دی ایٹھ سیمسٹر لاسٹ ایئر میں تھا، اور وہ ماشاء اللہ نکلتے ساتھ سنتا ہے کہ سر میری تنخواہ آلریڈی 1.5 لاکھ روپے ہے، اور ابھی اس کو گریجویٹ ہوئے لٹرلی ابھی کچھ 2 ماہ ہوئے تھے۔ تو ماشاء اللہ یو سی پی کے اسٹوڈنٹس دے آر ڈوئنگ ویری ویل۔ بالکل۔
1: اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے جو بندہ میڈیا پڑھتا ہے وہ ایز اے جرنلسٹ کام کر سکتا ہے، ایز اے نیوز اینکر کام کر سکتا ہے، تو سر جو آئی آر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے بتائیے گا سر کہ کس شعبے میں جا سکتے ہیں، کیا کیا مارکیٹ اپرچونیٹیز اور کیا کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں جو وہ اویل کر سکتے ہیں؟
2: پولیٹیکل سائنس اینڈ آئی آر، یہ آئی مین دیر از اے ویری وائڈ ارے آف ایریاز جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو شوق ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ جنرلی سول سروس کا ہوتا ہے۔ تو جنرلی اسٹوڈنٹس جو پولیٹیکل سائنس اور آئی آر پڑھتے ہیں، ان کا سکسیس ریٹ ہمارے سول سروس ایگزام بہت ہائی ہوتا ہے، چاہے وہ سی ایس ایس کا ایگزام ہو یا پی ایم ایس کا ایگزام ہو، اسٹوڈنٹس دے جنرلی ڈو ویری ویل۔ اور آپ اگر دیکھیں جو پاس اسٹوڈنٹس پاس ہوتے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس میں، اکثر لوگوں نے پولیٹیکل سائنس یا آئی آر رکھا ہوا ہوتا ہے، چونکہ یہ جو سی ایس ایس کا ایگزام آپ کا ہے یا پی ایم ایس کا، اس میں بڑا ہیوی ایمفسس ہوتا ہے ہسٹری پہ، پالیٹکس پہ، کرنٹ افیئرس پہ، انٹرنیشنل افیئرس پہ۔ تو پولیٹیکل سائنس پڑھنے سے بیسکلی آپ کی سی ایس ایس کی تیاری ساری ہو چکی ہوتی ہے، اور جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں آپ کے آدھے سبجیکٹ سی ایس ایس کے تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک ایریا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ میڈیا اسٹڈیز، آئی آر پول سائنس کے اسٹوڈنٹس میڈیا میں بھی بہت آسانی سے جا سکتے ہیں، بیکاز ان کو دنیا کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو میڈیا میں آسانی سے جا کے وہ اینکر پرسن یا انالسٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جنرل سبجیکٹس چونکہ انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہر ایریا اوپن ہوتا ہے۔ آئی مین فار ایگزامپل آپ نے کوئی جنرل مینیجریل جاب کرنی ہے، اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی اسپیسیفک اسکل، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ سب ایریاز بھی اوپن ہیں، مینجمنٹ، بزنس کے اندر، کارپوریٹ ورلڈ کے اندر۔ میرے بہت سے جو جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی تھی وہ کارپوریٹ جابس بھی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر بہت بڑا ہے، جہاں پہ آپ کا این جی او سیکٹر ہے، آئی این جی اوز ہیں، گورنمنٹ سیکٹر ہے، کنسلٹنگ ہے، اس میں اسٹوڈنٹس بہت سارے جاتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں۔
1: ویل دیٹ از گریٹ ٹو ہیئر سر، کہ ایک جو ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے، دیٹ از ویری نائس ٹو ہیئر سر۔ اچھا سر، موونگ آن، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایڈمیشن کیمپین کے حوالے سے شو کیا جا رہا ہے، تو میں آپ سے ایڈمیشن کے کرائیٹیریا کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس جو میرے لسنر نے ابھی ابھی انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے، سر کیا کرائیٹیریا ہے اس کا، کیا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ وہ ہیومینٹیز آف سوشل ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی فیکلٹی کے اندر ایڈمیشن لے سکتا ہے، مطلب اس کو کتنے انٹرمیڈیٹ کے مارکس چاہیے اور کیا اسکالرشپ وہ اویل کر سکتا ہے؟
2: ہاں، اس میں ہم جو انڈر گریجویٹ پروگرام ہے اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہوں، اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے یا آرٹس پڑھے ہیں، سب اسٹوڈنٹس اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مارکس کی بات ہے، آئی تھنک یو نیڈ ٹو اسکور 50% مارکس، جو آپ نے اگر میٹرک یا ایف ایس سی میں لیے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔
1: اچھا سر، ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو، आई गेस द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जो कि ये है कि लाहौर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, UMT है, UOL है, बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ जो हैं वो ये वाले सब्जेक्ट्स ऑफ़र करवा रही हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो UCP है, UCP ऐसा क्या काम कर रहा है जो कि हमें जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे सेट अपार्ट करता है? हम क्या ऐसा यूनिक दे रहे हैं, क्या हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है?
2: आई थिंक जो चीज़ यूनिक है हमारे प्रोग्राम के बारे में और हमारे कैंपस के बारे में वो ये है कि जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ मिलता है वो आई थिंक इनके कंपेटिटर्स में नहीं मिल सकता. फॉर एग्जांपल हमने पिछले एक साल में जितने ज़्यादा इवेंट्स करवाए हैं और जितने अहम डिग्निटरीज हमारे इवेंट्स में आते हैं, फॉरन अभी हमने वी हैड अ वेरी लार्ज कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी, तो वी हैड स्कॉलर्स फ्राम सिंगापुर, स्कॉलर्स फ्राम इंडिया, स्कॉलर्स फ्राम पोर्चुगल, स्कॉलर्स फ्राम इंग्लैंड, फ्राम अमेरिका स्कॉलर्स आए थे. They spent 3 days here. They interacted with the students. Students were part of the whole, engagement. बल्कि students ही हमारे events करवाते हैं. हमारी जो faculty है उसका emphasis आ रहा है इस बात पर कि students को आगे लेके आया जाए. तो उसके अलावा हमारे पास अपने पाकिस्तान के अपने important politicians, speaker of the Punjab Assembly और इस तरह के लोग भी उस conference में आए थे. Similarly, last time हमने पिछले साल we had a conference on climate change और उसके अंदर भी इसी तरह global scholars वगैरह आए थे और important senators आए थे और ministers आए थे. और स्टूडेंट्स उनसे खुद मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं. इट्स अ वेरी ओपन फ्रैंक एनवायरनमेंट. तो जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ मिलता है और जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ ऑफ द फैकल्टी इटसेल्फ, हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं हाईली क्वालिफाइड, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरन एजुकेटेड, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो हेल्प कर लेते हैं अगर स्टूडेंट्स भी बाहर पढ़ना जाना चाहें या मार्केट में, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिशनर्स भी हैं हमारी फैकल्टी में. तो इफ़ दे डोंट वांट टू स्टडी फर्दर बट दे वांट टू गो इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड इमीडिएटली, उसके लिए भी हमारे फैकल्टी के बड़े अच्छे नेटवर्क्स बने हुए हैं और स्टूडेंट्स आसानी से फिर मार्केट प्लेस में जाके अपनी जॉब वगैरह ले सकते हैं.
1: वेल दैट इज़ वेरी गुड टू हियर सर. अच्छा सर, आपने शुरू में मैंशन किया था कि जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है वो एक छोटी फैकल्टी है. तो सर मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं इस फैकल्टी को लेकर, क्या आप इसको ब्रॉड करना चाहेंगे? हाँ. या क्या फ्यूचर गोल्स आपने सेट किए हैं कि हमने इस डिपार्टमेंट को, जो ये फैकल्टी है, उसको यहाँ तक लेके जाना है?
2: हाँ बिल्कुल, वी आर वेरी एम्बिशियस एंड वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह. हमने क्या किया है कि पिछले बहुत कम वक्त में हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से हम मास्टर्स पे भी आ गए और हमने अभी रिसेंटली PhD भी लॉन्च कर दिया IR में, और पॉलिटिकल साइंस का BS भी इतना पुराना नहीं है और हमारा प्लान है कि उसमें भी हम मास्टर स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर PhD की तरफ भी जाएंगे. तो हमारा प्रोग्राम और हमारी फैकल्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है. आई थिंक वी विल डू वेरी वेल एंड वी आर डूइंग ऑलरेडी वेरी वेल. तो स्टूडेंट्स हैव ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स व्हेन दे कम टू UCP.
1: सर मुझे एक और बात बताइएगा कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा ना टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने से डरता है कि टीचर को कोई बात बुरी ना लग जाए. तो सर मुझे इस हवाले से बताइएगा कि UCP का या जो आपकी जो फैकल्टी है उसका कैंपस कल्चर किस तरह का है? स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रीली टीचर से आके बात कर सकते हैं उनके ऑफिस उनके ऑफिस आवर्स के दरमियान, या उनके पास उनके ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, इस तरह का ये पॉसिबल है?
2: जी जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के साथ हमारा तो बहुत फ्रैंक रैपोर्ट होता है. हम स्टूडेंट्स को, we have office hours pretty much every day. Students can come meet us in our office hours. आगे हमसे गपशप लगा सकते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर लेते हैं. उसके अलावा वी हैव अवर ओन मेंटरशिप प्रोग्राम. तो एवरी स्टूडेंट हैज़ ए फैकल्टी मेंटर एडवाइजर जो कि थ्रू आउट द 4 years विल स्टे अटैच विद दैट फैकल्टी मेंबर, और जो भी उसको पर्सनल मसाइल आए या एकेडमिक मसाइल आए दे कैन ईजिली गो एंड टॉक टू स्टूडेंट्स. मेरे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं, हम गपशप भी लगाते हैं, मसाइल पर बात भी करते हैं, मैं उनको बुक रिकमेंडेशन भी देता हूँ, एंड कभी कभी वो मेरे पास दिखा मैं सेट दे हैव टी विद मी एंड वी हैव अ लॉन्ग चिट चैट सेशन. तो बिल्कुल फैकल्टी इज ऑलवेज अवेलेबल एंड हैप्पी टू इंटरेक्ट विद.
1: Well, that is great to hear, sir. अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जो मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं, जो कि अभी फ्रेशली जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है और वो चूज करना चाह रहे हैं कि कौन सी फैकल्टी के अंदर एडमिशन लिया जाए, सर क्या जो IR है उसको क्यों चूज किया जाए? ये वाली फैकल्टी जो है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज उसको क्यों चूज किया जाए?
2: हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, और जाहिर है स्टूडेंट्स हम अक्सर ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होती है जब वो स्कूल से या कॉलेज से निकलते हैं मैट्रिक FSC करके कि आगे हम क्या करें. बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता होता है उन्हें जिंदगी में क्या करना है. अक्सर स्टूडेंट्स बेचारे यूनिवर्सिटी में आके भी वो अभी सोच रहे होते हैं कि हमें पता नहीं है व्हाट शुड वी बी स्टडीइंग और शुड वी रियली बी स्टडीइंग व्हाट वी आर स्टडीइंग. तो कैसे पता चले कि क्या पढ़ना चाहिए? आई थिंक इसमें हमें एक तो इंसान की ज़रूरियात को देखना ज़रूरी है, दूसरा मुस्तकबिल को देखना ज़रूरी है. अक्सर हम देखते हैं कि लोग, अब जाहिर है क्योंकि मेरा ताल्लुक ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के साथ है तो मैं आई विल गिव यू दैट परस्पेक्टिव. अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी का है फ्यूचर कंप्यूटर साइंस का है, आईटी का है, एआई का है, तो सब लोगों को यही पढ़ना चाहिए। और ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सब्जेक्ट्स फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, यू नो, सोशियोलॉजी, ये तो उसका ऑपोजिट सब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्यों पढ़ने चाहिए। एक्चुअली अगर मैं आपके लिसनर्स की तवज्जो इस तरफ करवा सकूं तो उनको ये पता चले कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन आ रहा है, और अब हमारे स्टूडेंट्स भी, बच्चे अब तो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे बच्चे इवन फ़ोन पे वो मेटा का एआई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, और एआई सीम्स टू बी टेकिंग ओवर। और जिस वक्त दुनिया में लोग अहले नज़र हैं जो दुनिया को बड़े गौर से देख रहे हैं, उनका नब्ज, उनकी नब्ज जो है वो माशरे की उस पल्स पे है, तो वो ये बता रहे हैं और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रेवोल्यूशन है, इसने आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल एरियाज़ को नापैद कर देना है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, ग्लोबली भी देख रहे हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, उनके काम आर बीइंग एनक्रोच्ड अपॉन बाय एआई। तो अभी मैं एक मीटिंग में था रिसेंटली, उसमें पता ही चला कि पाकिस्तान में जो आपकी आईटी की जॉब्स हैं, एक्चुअली दे आर इन डिक्लाइन। पिछले साल पाकिस्तान में 80,000 जॉब्स थी कंप्यूटर साइंस की, इस साल सिर्फ 30,000 जॉब्स हैं। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ दे आर यू नो डिशिंग आउट सो मैनी आईटी ग्रेजुएट्स। और उसकी वजह क्या है, एक तो यह है कि आईटी चूंकि सब लोग पढ़ना चाहते थे तो सब लोग उसमें चले गए, ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हो गए, ज़ाहिर है मार्केट की एक लिमिटेशन होती है ना, तो उतने अब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मार्केट में नहीं है, एक तो ये वजह। दूसरी वजह यह है कि एक्चुअली एआई इतनी स्मार्ट है कि वो खुद ही कोड लिख लेती है, खुद ही वेबसाइट बना लेती है, खुद सॉफ्टवेयर बना लेती है, तो कंप्यूटर साइंस वालों ने, बेचारों ने खुद ही एक फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर बना लिया अपने लिए, वो अपने आप को ही बेरोजगार किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी है जो उन्हीं को गैर जरूरी कर देगी और कर रही है। और दुनिया में अब ये बात हो रही है कि 2030 तक शायद एआई कंप्लीटली आपके दुनिया को बदल चुकी होगी, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड को बदल चुकी होगी, आपकी जॉब शायद किसी को जरूरत ही ना हो, इवन टेक्निकल जॉब्स लाइक डॉक्टर की जॉब्स हैं। अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट अ कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन द यूएस, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, उसमें वो ये मेडिकल डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं एआई के ऊपर, ये बता रहे थे कि हमारे अब एआई के जो एजेंट्स हैं, जो एआई बॉट्स हैं, जो हमारे पास टूल्स हैं, वो रेडियोलॉजी में जो स्कैन्स किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन स्कैन्स या बॉडी के स्कैन्स, जिसको देख के डॉक्टर बताता है कि आपको मसला क्या है, वो कहते हैं कि हमारे जो एआई की एनालिसिस है उन स्कैन्स की, वो उसकी एक्यूरेसी 95% है तकरीबन, और जो एक बहुत बड़ा पुराना मंजा हुआ डॉक्टर होता है उसकी एक्यूरेसी 60% होती है। यानी एआई इज बेटर देन अ रियल डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर एट जजिंग योर डिजीज। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता ही डॉक्टर्स को भी गैर जरूरी कर देगी। तो जहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, डॉक्टर की जॉब भी चली गई, एआई ने सब कुछ करना शुरू कर दिया। अकाउंटेंट भी आपको नहीं चाहिए, एआई आपके सारे अकाउंट्स देख सकता है, कर सकता है, ऑलरेडी कर रहा है, और इंप्रूवमेंट्स कितनी स्पीड से आ रही हैं। अभी दो हफ्ते पहले चैट जीपीटी 5 आ गया, आगे ग्रॉक 4 आ गया, तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन एरियाज में जाना तो खतरनाक है, तो फिर कहाँ पर जाएँ? जब दुनिया के ऊपर एआई की हुकूमत होगी और रोबोट्स आ जाएंगे, और वो आ रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता है टेस्ला की फैक्ट्रियों में रोबोट ज़्यादा हैं, इंसान कम है, तो फिर उस दुनिया में इंसान को ज़रूरत महसूस फिर साइंस की नहीं होगी, आईटी की नहीं होगी, बल्कि ज़रूरत उसको महसूस होगी इंसानियत की। ही विल फील लाइक मुझे ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। हर

0: दिस इज़ माई व्यू. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट. एंड आई गेस ये सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है, जिस तरह से आपने बताया कि AI वुड बी टेकिंग ओवर द ऑल द वर्ल्ड.
1: इट इज़ ऑलरेडी टेकिंग ओवर, आप देख सकते हैं.
0: इट इज़ ट्रू सर, इट इज़ ट्रू. दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ. कीप लिसनिंग टू FM 92.6. आप सुन रहे थे फैकल्टी आवर, और ये एपिसोड इख्तिताम की तरफ पहुँचती है. दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP, FM 92.6, UCP Ki Duniya.

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: इस सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 24/7 only on FM 92.6. UCP ki duniya, fun, entertainment, news, knowledge, 24/7 only on UCP FM 92.6. UCP ki duniya.
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की. ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की. तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6। ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

इस सुर और ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।